0: India's overseas talent is coming home.
1: I wanted to see how I can build in India, so I decided to move back in 2024.
0: Some are driven by new opportunities.
2: Today, India is the fastest growing economy.
0: Others by a lack of welcome abroad.
3: There was also anti-immigrant rhetoric.
0: How will India accommodate the returnees?
4: We have to remember that not everyone's going to get a job.
0: India's reverse brain drain. Insight, Thursday on CNA.
5: March 2026. LPG and LNG shipments from the Gulf to India have been disrupted by the blockade of the Strait of Hormuz. The disruption has triggered an energy crunch, with long queues for cooking gas cylinders across the country. But in one rural setting, a quiet energy revolution is underway. Housewives like 32-year-old Mitlesh Yadav are making a transition to renewable energy.
6: जब ये था कि पहले हम चूल्हे पे खाना बनाते थे और एलपीजी से तो हम जैसे धुआं होता था परेशानी बनती थी हमें टाइम ज्यादा लगता था तो अब हम इस पे बनाते हैं तो अपने कभी भी कुछ भी काम करते हैं मतलब गैस बंद करी अपना काम कर लिया और चूल्हे का काम ये था कि परमानेंट पहले चूल्हे का ही खत्म करना है गैस की मतलब एलपीजी की ये दिक्कत थी कि कभी सिलेंडर खत्म हो गया तो फिर हमें चूल्हे पे खाना बनाना है अब इस मतलब जब से ये गैस लगी है ना तब से हमें कोई परेशानी नहीं है तब से हम कंटिन्यू इसी पे खाना बनाते हैं टाइम टू टाइम मतलब एलपीजी से तो कम ही लगते हैं एलपीजी से तो जैसे कि एक सिलेंडर हमारा 20 दिन चलता है अब हमें सिलेंडर भरवाने की तो टेंशन है ही नहीं
5: Switching to the biogas system was her husband Arjun Yadav's idea.
7: सुबह को डेली गोबर उठा के इसमें इकट्ठा करके और उसको पानी के द्वारा मिक्स करते हैं घोल के वो उसके बाद इस डाइजेस्टर में जाता है इसे हटा देते हैं इस तरह से अपने आप ही डाइजेस्टर में चला जाएगा ये इसका डाइजेस्टर है इसमें जो डाइजेस्ट होता है इसमें डाइजेस्ट होने के बाद उसकी मीथेन गैस जो बनती है बायोगैस वो इस पाइप के द्वारा ये इसका गैस का पाइप है आउटपुट जो हमारा गैस भविष्य में ओवर फ्लो होती है ना इसमें गैस ज़्यादा बनती है हमने यूज नहीं करी कभी तो इससे वो ये है सेफ्टी वॉल से बाहर निकल जाती है वो हानिकारक गैस होती है वो यहीं फिल्टर हो जाती है आगे नहीं जाती है जो चूल्हे के बर्तन को काला करती है फिर उसके बाद गैस घर रसोई में काम आ जाती है
5: The cow dung slurry that comes out as a byproduct from the methane digester provides additional benefits to this farming family.
7: और जो इसकी स्लरी निकलती है वो हमारे खेत में डलती है जिससे जो हमारा यूरिया डाई उसका जो कंजप्शन 25% ही रह जाता है जो पहले हम 100 केजी लगाते थे उसका 25% ही लगता है यानी कि 25 केजी और अच्छा रिजल्ट है इसका जो स्लरी का यानी कि 75% खाद बचत है और गैस का तो 100% बचत है गैस की तो एक साल से डेढ़ साल में इसकी कीमत रिटर्न हो गई हमें एक से डेढ़ साल में इसकी जो कीमत हमने लगाई थी वो तो रिटर्न हो गई अब तो फायदे का सौदा है अब कोई वो नहीं है
5: Since the 1980s, the Indian government has promoted biogas as a low-cost rural energy source. More than 5 million digester units have been installed across the country, converting farm waste into methane for cooking.
2: Every country who are dependent on the fossil fuels from the outside, they are facing the challenge. The government of India introduced Gobardhan, galvanized bio-agro resource dhan policy, promoting small-scale, medium-scale biogas plant. India has a huge potential. India can generate around 62 million metric ton CBG per annum. They have set a target to install 5,000 CBG project. And as per some current estimate, around 130 or 140 plant has already been set up. We can generate the gas in the village level that can be supplied to fulfill the requirement of our village. We have a huge potential to generate the CBG. So that will create long-term impact to reduce our import bill. It's a sustainable solution. We can also reduce our fossil fuel dependency. And we can also improve our air quality by, you know, reducing the burning of this agriculture residue.
5: Known as the food basket of India, the Indian state of Punjab is beset with the problem of stubble burning. Stubbles, or the short leftover stalks of crop plants, such as wheat, rice, or corn, remain rooted in the ground after the main grain or harvest is collected. Amongst many farmers, burning them is considered an efficient method to clear their fields for the winter sowing season. Stubble burning is a major contributor to poor air quality across northern India. One study estimates crop residue burning caused 44,000 to 98,000 premature deaths annually in India between 2003 and 2019. What is burned as agricultural waste in Punjab province can also be used as a source of energy. In the city of Sangrur, Pankaj Jain oversees how paddy straw is converted into compressed biogas, or CBG, on an industrial scale.
8: Our core focus is paddy straw. And why paddy straw? Because as of now, paddy straw has no solution. Farmers has no solution. In case we won't take it, then they have to burn it or maybe in situ it. So that's why to avoid stubble burning, our main focus is the paddy straw. But yes, we can use other agriculture residues also, like the wheat straw, we can use the maize straw, we can use the sugarcane straw. The raw biogas which is coming comes into these units. These are the gas purification units. So these are the two columns. In these units, first process is the absorption of CO2 and raw biogas becomes purified. And then there is a further removal of H2S and moisture in this gas purification unit, and the pure biogas or the CBG comes from through this pipeline. After this pipeline, it goes into those compressors where we compress the gas to 250 bars.
5: The Verbio facility is Asia's largest compressed biogas plant. It has reduced 150,000 tons of carbon dioxide emissions by preventing stubble burning across tens of thousands of acres. Inspired by this success, more such plants have been planned across the state.
9: We have kind of set up a blueprint wherein the same concept is ready to be replicated in other parts of Punjab and overall country as well. We generate close to 500 to 600 million tons of agri residue every year. Now, the volume of the residue which is getting burnt is to the tune of anything close to about 100 million tons per year. Now, the 100 million tons can translate into about 10 million tons of bio-CNG. What it means is that with this as a resource, we can meet almost more than 50% of our import demand for CNG. So that is the role bio-CNG could play in the overall energy mix.
5: Farmers like 44-year-old Gurdeep Singh are benefiting from these solutions.
10: Burning the time, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਬ ਕਾ ਹਮਾਰੇ ਜਹਾਂ ਵੈਰਬੀਓ ਕਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਤੋ ਪਹਿਲੇ ਵੋ ਉਨਕੇ ਆਪਣੇ ਬੇਲਰ ਥੇ ਉਸਸੇ ਹਮਾਰਾ ਪਰਾਲੀ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਮੇਂ ਲੇਕਿਨ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਹਮਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਲਰ ਖਰੀਦ ਲੀਏ ਅਭੀ ਹਮ ਉਸਕੋ ਆਪਣੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਗਾਂਵ ਕੇ ਕਿਸਾਨੋ ਕੀ ਪਰਾਲੀ ਕੋ ਵਹਾਂ ਉਨਕੋ ਸਪਲਾਈ ਕਰਤੇ ਹੈ ਜਿਸਸੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾ ਖਰਚਾ ਕਮ ਹੋਤਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਲਦੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
5: ਆਫਟਰ ਦ ਬਾਇਓਗੈਸ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ The Verbio plant returns the stubble slurry to farmers as fertilizer.
10: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਂਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਖਾਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਮਤਲਬ ਗਲਕੇ ਇੱਕ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਔਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਇਰਾਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਉਸ ਨਾਲ ਗੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇਲ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਰਪਰਾਂ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ ਅਗਰ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲਾਂਟ ਔਰ ਬਣੇਗੇ ਭਾਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਊਰਜਾ 'ਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
5: As Punjab marches on with biogas, a Bengaluru kitchen has found alternatives to gas shortages.
11: Tonight on Japan Hour, getting to know beautiful Japan takes you on a pilgrimage of horses, hopes and heritage. Meet the sacred horse of Ese Grand Shrine. Horses that carry wishes to the gods. And the hardy Kandachimi horses, where every hoof print tells a story. Japan Hour, tonight on CNA.
12: Japan Hour is brought to you by Sumitomo Corporation. MUFG, committed to empowering a brighter future. Zip Air, all flights, all seats, free high-speed Wi-Fi available. IHI. And Takashimaya, visit our Mid-Autumn Fair, 20th August to 25th September.

0: Perched in the scenic hills of Himachal Pradesh lies the historic Sri Naina Devi Temple that was built in the 8th century AD. It's one of India's most revered Hindu shrines, dedicated to the goddess Shakti. Devotees from across India come here to worship, with more than 100,000 visiting on festival days. For generations, pilgrims here have been served free meals. But one aspect of this tradition has changed. It now uses kitchen waste to make biogas, cutting their reliance on expensive LPG cylinders. The temple's biogas digester processes 200 kilograms of food waste every day, producing around 20 kilograms of biogas. The gas is then used in the kitchen to prepare meals for devotees. Food waste is being turned into energy to cook the next meal. Head chef Nund Lal ensures food for the visitors and the waste for the biogas plant doesn't run out.
1: Gas ye aa raha hamara pipe piche se ji. Supply sari bhattiyon ki supply isi pipe se hai. Sab bhattiyon se kalli kalli bhatti ki supply jo hai isi pipe se aa rahi hai. Ye dopahar ke liye ji. Ghee aur daal. Ye subah naaste ka chal raha hai. Aloo chane ki sabzi. और एक कड़ी दोपहर के लिए सर सुबह से जी सब्जी की तैयारी करनी है आटा गूंदना है पूरी तैयार करनी है तो फिर मतलब उसके बाद हमने तैयार करके पूरी सब्जी वो लगाना माता को 7 बजे उसके बाद हमने स्टार्ट कर देना लंगर
0: फ्री ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर आर सर्वड ऑन अ डेली बेसिस विदाउट एनी ब्रेक्स. The Langar Hall has a seating capacity of 500 visitors at any given time.
1: वो पक्का एस्टीमेट तो हम बता नहीं सकते हैं सर दयालु जितना आते हैं माता के कभी हजार भी आ जाता है कभी 500 भी आएगा कभी 1500 2000 भी हो जाता है ये मतलब खुला काम है कभी 5000 भी आ जाएगा ये तो हमारा सर दयालुओं से आता है जी दान का भी आता है जो हमारे को कमी पड़ती है वो हमारे को लेना पड़ता है सरकार से वो.
0: The temple's biogas plant is the brainchild of Dharampal Chowdhury, who is the chairman of the Sri Naina Devi Temple Trust.
2: The belief and the mission behind this initiative ki actually jab maine yahan join kiya tha to humne dekha ki jo langar ka waste hai wo scientifically dispose of nahi ho pa raha tha aur jisse bahut sari samasya aa rahi thi even jo shradhalu aa rahe the yahan unse durgandh ये स्मेल जो है वो देखी जा रही थी कि वो स्मेल काफ़ी गंदी थी और दूसरा इसका वेस्ट का कोई डिस्पोजल सही तरीके से नहीं हो रहा था तो हमने सोचा कि क्यों ना इस वेस्ट से एनर्जी को बनाया जाए. ये हमारा कोल्ड स्टोर है जिसमें हमारी सब्जियां या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि ख़राब हो जाती हैं बाहर गर्मी में तो उसको स्टोर किया जाता है पर हमने इस प्रोजेक्ट को एज अ मॉडल प्रोजेक्ट लिया है और एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया है और हमें प्रतिदिन जो हमारा इस प्रोजेक्ट की जो लागत जो हमारी कैपेसिटी है दैट इज़ कि 200 किलो का जो वेस्ट है उसको एनर्जी में ये कन्वर्ट कर सकता है तो अराउंड 10% ऑफ द जो टोटल वेस्ट ये कैरी कर सकता है उसकी गैस बायोगैस ही बनाता है तो लगभग एक सिलेंडर यानी कि 20 केजी की जो वो बायोगैस प्रतिदिन बनती है. अगर हम मनी की सेविंग की बात करें तो लगभग एक सिलेंडर की कीमत आज के अगर मार्केट रेट के हिसाब से देखें तो 1000 रुपये बनती है तो लगभग एक महीने का 3 लाख रुपये के जो है वो अप्रॉक्सीमेटली सेव हो रहा है और साल का मोर देन 35 लाख रुपीज़ हम इससे सेव कर पा रहे हैं तो जो चढ़ावा होता है वो कहीं ना कहीं माता के दरबार में लोगों की श्रद्धा होती है और श्रद्धा को हम वापस श्रद्धालुओं को कैसे बेहतर सुविधाएं दे सकें जब वो दर्शन करने आए तो एक सुगम व्यवस्था बने.
0: As one community embraces change, another is preparing the next generation to build on it. Sri Prakash Vidya Niketan is a residential school serving more than 2,500 students from rural communities across southern India.